0: देखौं स्वस्थ बच्चा उज्जवल भविष्य स्तनपान करम स्वास्थ्य बचाओ।
1: रेडियो प्रभाव एफएम को सहकार स्वास्थ्य कार्यालय द्रव्य द्वारा चयनित मंत्री संदेश
2: जो कि यहाँ आई सब

का नहीं वो तैनात हो सकता इसके वन बने जंतु वातावरण का मानव जीवन का गंभीर और सफा दशा इस कारण सुखा क्षेत्र वातावरण आस पास आगो मिटा रहो दुर्घटना का विशेष सुरक्षित का व्यवस्थापन कर रहो लगातार धुआं में आगो दिखने पर तुरंत संबंधित निकाय या समुदाय जानकारी दे रहे हो।

कार्यालय अंतर्गत सशस्त्र प्रहरी गुरुमन ठाकुर कंठपुर बरदियारा इलाका प्रहरी कार्यालय मरीना पोखर प्रहरी जनपथा पर्यटन गांव पालिका को समन्वय में कार्यक्रम कर कार्यक्रम में गैस सिलिंडर हुन सक्ने आगलागी तथा अन्य विपत्त घटना सुरक्षित रहने उपाय प्रारंभिक नियंत्रण विधि आफू तथा परिवार सुखाने तरीका बारे व्यवहारिक अभ्यास प्रदर्शन आगलागी को अवस्था सिर्जना करी सुरक्षा कर्मी नियंत्रण प्रक्रिया समेत प्रदर्शन करो। इस अवसर में स्थानीय समुदाय विपत को बेला अपना पर्ने सावधानी उद्धार का उपाय तथा जोखिम न्यूनीकरण का विषय में जानकारी दी। इस अभ्यास ने समुदाय को विपत प्रति कार्य क्षमता वृद्धि करने विश्वास लिखा। कार्यक्रम में अड़ताल गांव पालिका विपत व्यवस्थापन समिति के संयोजक लक्ष्मी कुमारी अधिकारी वड़ा नंबर 6 का सदस्य सुब्रराज सापकोटा सशस्त्र प्रहरी नायक परीक्षक वीरेन्द्र पाल प्रहरी निरीक्षक अच्युत गिरी सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक कृष्ण थापा पोखर प्रहरी रमेश पौडेल लगायत जनप्रतिनिधि सुरक्षाकर्मी स्थानीयवासी विद्यार्थी और संचार कर्मी।

0: बड़ा सुखर बात, कहाँ से नल लो?
1: एक महीना में इंद्र बागन से पांच मिनट गुड्डू जलन से नल ले रहूँ।
0: और तुम अपन घोड़ा कहाँ से मिले रहो?
1: ये गाना है
0: कौन सौदा से लड़ू कौन सौदा से लड़ू
1: भाई मनो सौदा ना हो
0: सबको मजा ना हो
1: तो का भी एम रूम देखो सोझी ने कहा उनके पांच में बुद्धू जरस में गहना हो उनके सुन चांदी के गहना बड़ा मजा हो तो कैसे सुनना नंबर वन सुन चांदी गहना तैयार करो तो और कर अनुसार गहना से बनी खाई
0: मोनो दीदी हम के नेपाल का जाना तो बड़ा दूस पड़त बड़ा ढेर भारे लागत तो हम उनके पूरा दिन चल जाए
1: तो काली चिंता कर छो पांच मिनट गुड्डू ज्वेलर्स ने पालगंज के साथ अब बांसरी बाजार किसान चौक के लग गए सिद्धार्थगंज के तारे आएगा अब सब कुछ के लग गए पड़ी यहाँ तो नेपालगंज के भाव अनुसार सुनता जी के घर रखू कही वो
0: ठीक बात है दीदी अब हमने यहाँ रोहन नहीं जा आप सोच हमने पांच मिनट गुड्डू ज्वेलर्स नेपालगंज के साथ बांसरी बाजार किसान चौक के लग गए सिद्धार्थगंज के तारे जाए

0: पांचवें युद्ध ज्वेलर्स राजकीय नगरपालिका पांच किसान चुप के लगे सिद्धार्थ वैद्य तय मोबाइल नंबर 98662613600 और 98296 84294।
1: नोट हमारे पांचवें युद्ध ज्वेलर्स पर एक कठोर केला शाखा सिद्धार्थ वैद्य राजकीय का तय रहता है नकली पांचवें युद्ध ज्वेलर्स में से होशियार रवि।

0: आई लावा जात के धान के बिया श्रेष्ठ एग्रोभेट में आई।
1: श्रेष्ठ एग्रोभेट में मेरा खाना बिया हाइब्रिड में एमपी 30-30 64-44 यूएस 312 ओआईएमआरएस 57-86 ओसनेका उन्नत जातका धानमा राधा 4 सावित्री सजु 52 साना मनसुली राम धान 606 505 301 यामिनी जसिन मसिनो मोटा धानक बिया आज श्रेष्ठ एग्रोभेटमा आशा गर्दा
0: ओसेके रासायनिक मलमा युरिया डीएपी पोटास ओ मेरी 53 के बिया विषादी पशु पंछी के औषधि उपचार सहित
1: स्थान बाँसगढी किसान चोक से दक्षिण सामुदायिक पुस्तकालय पूर्व साइड में।

0: को दूध बच्चा को पहिलो औषधि हो। जन्मे एक घंटा भित्र अनिवार्य स्तनपान शुरू करौ। 6 महीना सम्म आमा को दूध मत खुआ। स्वस्थ बच्चा उज्यालो भविष्य। स्तनपान गराउ स्वास्थ्य बचाउ।
1: रेडियो प्रभाव एफएम को सहकार में स्वास्थ्य कार्यालय बर्दिया द्वारा जनहित में जारी संदेश।
0: रेडियो

संध्या सवा छ बजे हमार संदेश में अपना स्वागत बात सुन्दरिया बिंदु संग कुमार रेडियो प्रभाव एफएम बर्दिया से उत्पादित हमार संदेश बर्दिया का साथी एफएम गाजापुर पार्टी का रेडियो पटबोल एफएम कोलपुर रेडियो हाजिर मारो जानकी का उपाधि का पाठन से प्रसारण प्रसारण हुई की बात हमार संदेश का भेड़ा ही मुख्य मुख्य समाचार का शीर्षक मसले वास्तवी में युवा संजाल का ऐतिहासिक प्रख्यात वार्षिक शासन सभा हिमजल आज हमारे लोगों ने चयन हुई पासपरिमा जैविक मल का थाना निर्माण सरकारी प्रतिशत केन्द्र जैविक प्लास्टर उत्पादन का लक्ष्य और गेरा में समस्या प्रस्त चितवन नियंत्रण में जानकी गांव पालिका का शिक्षक एआई का सुरक्षित जिम्मेवार प्रयोग करना सोलह बुने प्रतिबद्धता सार्वजनिक परिमा पार्टी सूची

0: स्वच्छित ठाउँमा पठाएका कृष्ण सार संरक्षण क्षेत्रका सूचना अधिकारी राम केसी जानकारीबाट कोषी उत्पादको स्थानीयवासी प्रलपको मैं प्रयास सूचना अधिकारी केसी पटवेलाबाट चालू आर्थिक वर्षमा कृष्ण सार संरक्षण क्षेत्रमा 21 कृष्ण सार मोलबाट मध्ये 10 कृष्ण सार चितवाको आक्रमणमा से मूलक सूचना अधिकारी केसी जानकारीबाट विशेष महानात्मक प्रश्न सरकार पार्टी आज हमारा पांच बड़ी नगर पालिका उत्तर नंबर चार उत्तर बत्तर किसान का प्रश्न लेखा पार्टी
1: पानी नहीं आई अब हमने अगर हमें पानी भरे तो हम पानी आई और पानी आई ही देखे पानी बरसा तो पूरे गरीब पकड़ने से हमारे पैसे पानी कहाँ पड़े तो पैसे क्या आई है
0: प्रश्न
1: पानी पानी भित्र पानी गाउँ पोखरी खोला नाला जहाँ पनि सफा गरेर पानी जमा गरेर जस्तै सार्वजनिक जमिन पोखरी पानी जमा गरी त्यो जमिन भित्र चाहिँ चार्ज दिन अब यहाँ जस्तै पहिले कतै पट्टी बनाए घर मिले पूरा पक्की बनाए थे अब आंगन पर पक्की बनाई थी तो अंदर पानी डाल रहे पेट्रो कहाँ से तो कहाँ से रिचार्ज नहीं हुई तो रिचार्ज नहीं हुई तो कहाँ से चली कोई मारे गाँव पार पर पोखरी वो सब बाहू का दो टेक्टर ना हो वो का जब तक सब होटल तक नहीं पूरे ना से बना हुआ नहीं ना हो हमें आके निकाल दिया उसका बुढ़वा बुढ़वा पोखरी बनाए गए थे ना तो नहीं जमीन में रिचार्ज हुई हाँ तो पानी आई
0: काम शिक्षा स्वास्थ्य खाने पानी सरसफाई विद्युत लगायत विषय में कोई समस्या वा जिज्ञासा से अपना फोन कई खबर रेडियो गुरुमा एफएम को कार्य मार्फत अपन जिज्ञासा अपना रिकॉर्ड कराई सकती ज्यादा हमारे स्टूडियो पर टेलीफोन नंबर 0084404074 में मोबाइल नंबर 98580059003 में फोन कई अपन समस्या जिज्ञासा टिप्पणी सकती अपना प्रमुख प्रश्न जिज्ञासा रिकॉर्ड करेगा संबंधित निकाय से जवाब देगा हर शनिवार विशेष में प्रसारण करने पार्टी पार्टी को जानकी गांव पालिका का शिक्षक व शिक्षण सिकाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आई का सुरक्षित सृजनशील व जिम्मेवार परिपूर्ण स्वरूप ने प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक करदाता संभावता नेपाल में पैदा छात्र शिक्षकों का एआई प्रयोग संबंधी औपचारिक सामूहिक प्रतिबद्धता जारी कई जगह प्रतिबद्धता पत्र में एआई मसे प्राप्त संबंधी तथ्य प्रमाणीकरण पा सके परिपूर्ण शिक्षण व मूल्यांकन का अंतिम जिम्मेवारी स्वयं वहन करना विद्यार्थी में एआई साक्षरता रचनात्मक सोच व सृजनशीलता विकास करना उल्लेख कहिबा संदर्भ गोपनीयता व डेटा सुरक्षा का ख्याल करना प्रतिलिपि अधिकार शैक्षिक ईमानदारी कायम करना तथा एआई प्रयोग विषय पारदर्शी रूप में खुलेन प्रतिबद्धता जनाएगा शिक्षक उग्र एआई हमारा शिक्षक का विकल्प बने को सहयोगी साधन का रूप में प्रयोग करना विद्यालय स्तर में न्याय संबंधी नीति आचार संहिता को कार्यविधि निर्माण में भूमिका खेलना तथा अभिभावक विद्यार्थी को समुदाय स्वच्छता फैलना विषय के समर्थनबाट मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्धन केन्द्र पूरी पाँचे का आयोजना हो जानकी गांव पालिका का आर्थिक सहयोग में 1185 గతి సమాన పార్కర్ సంచాలన బిల్ పెండింగ్ ఆర్ తాలీం కోసం ఆకర్షంగా ఉపాధి పథక స్థాపించి కలిగినప్పుడు తాలిమాత పాలిక పిత
2: सुझाव संकलन का लाभ ध्यान आयोजना कर

0: ಏಕೆಂದರೆ ಜೇಟ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಪಿಸಿ ಸಭಾಪತಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ವಿನೋದ್ ಕೇಳಿದರ್ಗ ಮೈನಾಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಸುಧಾಂತ ಸಂಕಲ್ಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ಧಾರ
1: राष्ट्रीय समाचार संघ सन्देश का समय सन्देश मुख्य मुख्य सन्देश थे पांचवटी में युवा संचार पांचवटी का ऐतिहासिक प्रथम वार्षिक साधन सभा तथा अधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रम मंचल में कम्युनिस्ट पार्टी एमाले पार्टी सुदृढ़ीकरण शुद्धिकरण और सुदृढ़ीकरण रूपांतरण तथा पुनर्गठन द्वारा प्रथम रेगुलर कार्यक्रम से प्रदेश स्तर से सुझाव संकलन शुरू करेगा। रिटर्न अब हमार संदेश प्रभाव कर विन्यास सात बजे नेपाली भाषा हमार संदेश के भाई तब समग्र समाचार का क्षेत्र सबको समय प्राप्ति समय गौरी शंकर कैमरा में असंग्रह बिंदु संग रघु कुमार के विदा हो रेडियो दुर्गा।

0: है तो करेला अनुहार से कमी हो पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा शुभ मसले देना
1: रक्त पका मुझे बतक लाख कई साग पात दाल पूरी ग्यारह हरा मच्छी सीता और फल फूल आयरन युक्त खाना नियमित रूप में खाई
0: जंक फूड का संतुलित

نسل اسکی سرمستی اترمت پروان کو محاسکتی مانیے کو براجل را مرک کو بیسکو پاتیس پتا پولی بیہانا پولی چار بزے ہوئی سا سنتسین آورا गांवों और पांगों से बाहर का महिला अचार बनाने के लिए व्यवसाय पर फाउंड मोक इसके साथ के लिए अब चाहे चल पड़ने को था पाए केरे को सिलाई के हाथों में सारे की पर पांगों तक भाई पनी बड़े पनी कौन सा पीले चुरु भाई हमारे मामा सुन भाई हमारे तालिबानी सी पार्क में विश्वास का रोजगार को अवसर दिए रिपोर्ट संगे युवा को रोजगार बंदे सुगम संगे तरह तरह कार को जीविका पति सुरक्षित विशेष संवाद सहित को शनिवार विशेष सार्वजनिक बाकी नेक्शन सीआईडी को साझा खबर सुनते रहेगा।

उसके स्वप्न को सचिव वो बिलास की तरह है। जो कोई यहाँ ऐसा था कि जो रास्ता यहाँ सिटी पर भी रास्ता रही यहाँ बढ़िया फिल्म हो, बहुत बढ़िया चीज हो, तो फिल्म बहुत प्रकार

स्थापना करता है हानिकारक नहीं रहा। स्वास्थ्य स्थापना करता है

0: जस्तो समय राकेश दैले कोलकाता पहाड़ी टुकड़ा ढूंढ देखा करते यहाँ जसला धाक सुविधा यहाँ पर बहुत कमा था
1: और चौथा ही भाग्य ये साफल कर्मचारी देखना रहना कर
0: संचालक
1: जनचेतन संदेश संघ मोहन कुमार

करते कम रहे हैं। नेपाल सरकार स्वास्थ्य को ज्यादा से ध्यान मंत्रालय विभिन्न जिम्मेवारी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूडब्ल्यूएफ नेपाल का साथै विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्वप्रथम अनुसन्धान केन्द्र समूहको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिटअपका साथ साथै विश्वभर रोटरी क्षेत्र एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत हुन्छ।

0: बिरादरी, साग सब्जी, फल फूल सहित का फसल का खाना ले बच्चा आना तंदुरुस्त बनाए पूरा खाना हर अगर दुई बरस समय इस पर पार जाए चाहिए।
1: रेडियो को दावा एकदम सहकार स्वास्थ्य कार्य पढ़ने से जनहित में जारी संदेश।
2: अंठानब्बे 88 86 128

कार्ययुक्त खाना नियमित रूपमा खाई जंक फूड कम गरी सन्तुलित खाना रोजी स्वस्थ किशोरी जो स्वस्थ भविष्यका आधार हो। रेडियो गुरुबाबा

0: कैलिफोर्निया को मार्केटिंग का युवा संचालन प्रशासनिक इतिहास के प्रथम प्राचीन सदन सभा तथा अधिवेशन का उद्घाटन कार्यक्रम
1: विशेष मामला प्रश्नों सरकार से बात सिखाई पार्टी आज समय पांच सौ नगर पालिका